वार मिगे शाशी गेबे सिन नामदो सिन तो छवर जिने मिथे रंगसर सुगुले कुयान दोंग सुय मारी जेचु गेबे शेटिंग की दाम दि थेबना कोने सिन तो ने जिबर गुरसि तने जोंग के थे दु मिशों वे यु ने मिसि दु मासोना सोंगो थेन बारका न्यामा था थेमार जोचे दिदि जुग लाम दो शुसिन ललु मांगो शाथार रनी मो सिन के मेबे छोंग की सि दु जोवाना थेगार ने जे की थुयु सिं बु पालिया देवसि निमसि खो छोम सिन थु गंगछम दो जोवे छि लुबो थु रंग के छो ने दा इमि ज था छे छ था पु ति जुंग वे सिन छि फोन्य लिप छु मु सि सिन थु जा पर जु ने लु तम गान छु सि थि बे बे इम ने सि जे या मनि द जाम थु गे गु सि दु बु थे ना लिया शु सोंग आ थान छि थेगार ग पि रिं बु सि यु थि वो दु हि बि सि यु जम सो ना क्यो तो छिन जि सु रु वा नि थ्वेन सि थि नि बि खु न्या दांग ने सुंग दि जा ना क्यो थि रिं सि ने ला तो थे जु क्यो गे नि नम नि शा खोम सुम खि रिं दु मि जुम जान छे मो जु बा दु बु मि हु रि या मे बा दां छु सि दि खु खेन छु छि सो हि सि थि बा मि थि नि बि थिं ग दा दु ngacha ge